बता भाई। चोस बता तेरा पर वो कहीं थे साकी पर मेरा बिरा फ्रेव वाला आवाज़ भी।